तुम जवाब दे दिया। मैंने पहले कह देना कि हमारे हाथ में अलग तुम कुछ मत बनो। इसका तक मौत नौकरी में रखा ही क्या है? एक काम के लिए तुम्हें 1,00,000 रुपया मिल सकता।

तुम दबा भेज दिया। मैंने शायद कह देना कि हमारे हाथ से अलग बेवकूफ मत बनो। इस सरकार की मौत नौकरी में रखा ही क्या है? एक काम के लिए तुम्हें 1,50,000 रुपया मिल सकता है।